कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रही खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना एक दिन पजना एक

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से

0: जब थिरकते पांव धरती पर, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने।
1: कमल दास जी तो बाद हूँ असि थानू पटियाला विखे डॉक्टर देवेंद्र कौर जी नाल मिलवाण जा रहे हैं। देवेंद्र कौर जी जेडे कि संगीत दे अध्यापक वजों सेवा मुक्त हो चुके ने, ते साडियां महफलां दे विच आंदे ने, ते साडे श्रोतियां दा मन परचौंदे ने। कला मन ही नहीं परचौंदे, उन्हां दे दिलो दिमाग ते उन्हां दियां कवितावां जिहड़ियां ओ छा जांदियां ने, ते हर वार दी तरह इस वार भी ओ साडी काम महफल दे विच अपनी एक नवी रचना लेके हाजिर हो रहे ने। देवेंद्र कौर जी थोड़ा स्वागत है।
2: सब नू मेरे प्यार भरे सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर देवेंद्र कौर अज जो कविता थोड़े सामने पेश करन लगी हाँ उसका सिरलेख है किसान दी खुदकुशी। किसान दी खुदकुशी। अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर कत्ल होईयां आसां हजारां। अज फिर हलूण गई खबर मेरे दिल नू, अज फिर कतल हुईयां आसां हजारां। अज फिर क्यों औखा होया जीवना, अज फिर क्यों सौखा होया मरना। बोझ बन गया साडे दिलां ते सवालिया निशान शासन दी हिक ते। किन्ना दर्द सहा होना उसने, किन्ना दिल च रोया होना उसने। किन्ने दिन दहशत विच कट्टे, किन्ने दिन दुविधा दी पेटे। सौखा हुंदा कदे कोई मरना, सोचे कदे उसदे तना दा। दिन रात वो सहम गया होना, माँ प्यो अगे टह गया होना। धी पुत्तां दे फर्ज करके चेते, पत्नी दा सोच दिल दहल गया होना। साडे लई इक खबर जो बन गई, साडे लई इक खबर जो बन गई, कमर उसदे टब्बर दी बन गई। किन्ने वैण पए होणगे, किन्ने वैण पए होणगे, मां बापू बच्चे कुरलाए होणगे। उसदी जदों कहानी खत्म हुई है, उसदी जदों कहानी खत्म हुई है, टब्बर दे दुखां दी कहानी शुरू हुई है। अन्नदाता अपनी जान दे गया, अन्नदाता अपनी जान दे गया, मुल्क दी हिक ते सवाल छड़ गया। अन्नदाता अपनी जान दे गया, मुल्क दी हिक ते सवाल छड़ गया। मुक गई किसानी जे किसे मुल्क उत्ते, मुक गई किसानी जे किसे मुल्क उत्ते, समझो उस मुल्क दे भाग फिर सुत्ते, समझो उस मुल्क दे भाग फिर सुत्ते। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत थोड़े सारयां दा।
1: गुरगौर जी तो बाद हुण असीं सदा दिन जा रहे हाँ दसूहा विखे वास्ते शायद।

तेरिया किस काम दितिया ने आजाऊं। इल्म पढ़िया ते अमल न किता हो। तेरिया किस काम कितिया बाताऊं।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंब दी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंब दी, एहसास

0: चल अड़िया हाथ फड़िया आपां तुर चलिए चंदी सैर नूं।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन्न दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ। अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

आखदे ने लोक ही काठो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सकेरो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सकेरो कहानियां हड़ एकता दा बन के कटामा असी धरती बसना है बन के कटामा असी धरती बसना है धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने माणिया स्वाद है आजादियां दा बेलड़ा ने

सुन लवो कागो असी कर देना सोनू पुठे, सुन लवो कागो असी कर देना थोनू पुठे, कुगियां दे बच्चियां नू कौन वाले ओ रोटी बच्चियां दे, रोटी बच्चियां

रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, कातों है नी

अती रात तक करना आंदा, अती रात तक करना आंदा, सप्पा दियां सिरियां नप के सौंदा, अती रात तक करना आंदा, सप्पा दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर किते भंगड़े, किंज पैने फिर किते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्र लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाने झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नूं हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकलां नूं हथ मार ला रूबी। तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आइयो खाने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आइयो खाने। अणख आबरू खोण नी देनी, अणख आबरू खोण नी देनी, तरत मोहताज किसे।

0: पेरेंटिंग स्टाइल नो अडॉप्ट करो, चाहे
1: जी
0: तुसी कुटदे मारदे भी हो,
1: जी
0: पर
1: जी
0: तुसी अपने बच्चियां दा अच्छा ही सोचदे हो।
1: ओदे विच भी आपां कहिंदे आ वी तेरे भले वास्ते कुट्टिया जा रिहा
0: क्योंकि
1: है।
0: नहीं, तुहाडी मंशा माड़ी नहीं है,
1: हाँ
0: तुसी अपने बच्चियां तो
1: जी
0: नफरत नहीं कर रहे।
1: नफरत नहीं हो रही, ये तो है ही
0: हाँ
1: है।
0: ठीक है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: तां
1: बिल्कुल
0: बच्चियां दे लई पेरेंट्स तो वध के कुछ नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल
0: जे
1: बिल्कुल
0: जे पेरेंट्स इन्नी क गल समझ जान कि सिर्फ गलबात कम्युनिकेशन गैप है,
1: जी जी जी जी
0: तुसी उसनों
1: बिल्कुल
0: वधाओ नहीं, तुसी
1: जी
0: उसनों
1: जी
0: पार करना है।
1: बिल्कुल
0: अगर तुहानू ये आदत नहीं है, हौली हौली अपने आप च डिवेलप करो।
1: जी जी जी जी
0: ठीक है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अचानक भी नहीं इन्नियां चेंजेस लेके आओ कि बच्चा कहे अज आ की हो गया
1: आके किसी होर दे घर ही आ गए पता नहीं
0: है ना। ठीक है, इस करके हौली
1: बिल्कुल
0: हौली अपने आप दे विच चेंजेस लेके आओ, जिहड़ा सहज सुभाव लगे
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी
0: ते दोनों लई अच्छा है, घर दा माहौल भी अच्छा होएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। ये लिए कोई इंटरनेट पर भी मटीरियल होगा, मोटिवेशनल वीडियो या कुछ यहोजे जेडे उन्होंने फायदा हो सके
0: बिल्कुल, बहुत है भरिया होया जी इंटरनेट अजकल, तो यूट्यूब तो जो मर्जी देखो।
1: पर
0: हाँ
1: फिर
0: जी
1: मुद्दा फिर वही आ जाता है कि बंदा जलंधर वाली बस, जो उन्हें जलंधर जाना है ताही फड़ेगा, वो तो पूछेगा अड्डे से जाके, जो उन्हें पता नहीं कि लभना की है।
0: मैं फिर कहांगी, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है,
1: जी
0: तुसी
1: जी
0: इसनों
1: जी
0: किस तरह वरतते हो ये डिपेंड करता है।
1: जी जी
0: तुसी सारा
1: बिल्कुल
0: दिन उस ते गेम्स ही खेल रहे हो या मूवीज ही देख रहे हो या नहीं,
1: जी जी जी
0: तुसी
1: जी
0: उस ते कुछ अच्छा भी देख सकते हो। तुहानू तुसी पहला तुहानू सीखण जाण लई कितें दूर जाना पैंदा सी, हुण तुहानू सारा कुछ घरे ही अवेलेबल है।
1: सारा कुछ हो गया जी बिल्कुल
0: टाइम एक उन्हों जस्टिफाई करो कि इन्ना टाइम देना है,
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: अच्छा
1: बिल्कुल
0: सीखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों उम्मीद है कि प्रोग्राम तुहानू बहुत पसंद आया होएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है पालन पोषण जिहड़ा बच्चों का है, और जे इहदे विच सुधार हो सकता है अपनी इस गलबात तो बाद भी थोड़ा बहुत फर्क मोड़ा पवे किसी की जिंदगी च, आपां समझदे हां कि बहुत कामयाब साडा अज दा ये प्रोग्राम रहा है। तो अखीर विच मैं धन्नवादी हाँ डॉक्टर भावना गुप्ता जी का, टर्न अराउंड एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज जलंधर दा, कि उन्होंने अपने कीमती रुझेवें चो समा कढ़िया, दोस्तों नाल सांझ पाई ते इतने बहुमुल्ले विचार सांझे कीते। बहुत बहुत शुक्रिया
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब।
0: तुहाडा सारिआं दा, तुसीं बुलाया इत्थे और मैनूं इह कहिण दा मौका मिलिआ। इह विशा बहुत ही मेरे दिल दे नज़दीक है, क्योंकि मैनूं इह लगदा है कि बच्चे जिहड़े हैगे आ उहनां नूं फुल्लां दी तरह रखणा चाहिदा है और हार्श नहीं होना चाहिदा, और मैं इह मैसेज वाकई देना चाहनी हाँ दिलों।
1: जी
0: तुसीं
1: जी
0: मैनूं इह
1: जी
0: मौका अज
1: बिल्कुल
0: दित्ता, एक प्लेटफॉर्म मिलिआ, तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नवे सेशन दे।

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर नाल टकराउणा चंगा, उस खुदा दी रहमत अंदर मनुखता दे काम आउणा चंगा। हक सच ले अड़ना सिखो न अंदर वह के जरना चंगा, नाल अणख दे जीवन दे लई न इन किसे दी परना चंगा। रल मिल के रहना सबने

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।